0: अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आए। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंडर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: वेरी गुड। सो स्टूडियो च गलबात हो रही है, नंबर है अपना 905-673-3337। एक तुसी प्रदीप भाजी नूं याद रखो, थोड़े कोई भी अपलायंसिस दी रिपेयर होने वाली है, फ्रिज, स्टोव, डिश वाशर, वाशर, ड्रायर या टीवी दी रिपेयर, तां 647-622-3203 दे उत्ते तुसी प्रदीप जी नूं फोन कर लो। एक मैं थोनू इनफॉर्मेशन नाल दी नाल दिना हुन्ना गेजर मॉनिटरिंग दी। गेजर मॉनिटरिंग वाले ना कैमरिया वाली कंपनी है, सिक्योरिटी कैमरे थोड़े कोल जी ट्रैकयार्ड है, कोई डीलरशिप आदि है, ये उत्ते 15-20-25-30-40 जिन्ने कैमरे लगनगे लाउणगे, तो कोई बैठा मोनीटर कर रहा हो कर रहा होगा। मैं थोड़ा कहना हुना कि कोई चिड़ी भी आके बहिंदी है थोड़ी यार्ड दे विच, थोड़ी लोकेशन दे, थोनू पता होगा भी कोई आया, इन्हां दी जदे थोनू कॉल आ जानी है। सो नंबर नोट कर लो, 905-520-5200 905-520-5200 ते कॉल करो। सर नाल सराश जुड़े ने यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तो, एक बार फिर गवर्नमेंट कोलों थोनू ग्रांट्स मिल रही ने। सराश दा तुसी नंबर नोट करो 437-264-3175 एंड सराश हुणे थोनू पैसे दवा रहे है, जिहड़े पैसे तुसी वापस नहीं करने, ठीक है, गवर्नमेंट ने ग्रांट देती, खर्चो जिथे खर्चने हैं, लिविंग एक्सपेंसिस से खर्चो, खाने पीने, ग्रोसरी से खर्चो, नो प्रॉब्लम। ते सराश नूं याद रखो, जल्दी सराश नाल गल करदे आं। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी लहरा नवी सिद्धू दे नाल। अपनी बिजनेस दी एडवरटाइजमेंट दे लई या होर कोई भी जानकारी लैण दे लई कॉल करो 647-504-1557 647-504-1557। वेरी गुड। सराश रेडी हो?
2: जी,
1: 5 मिनट्स बाद सराश, फिर मैं आपको 2-3 मिनट में कॉल करता हूँ, ते सराश कैम हो जाने थोड़े जिहा, ते फिर गलबात सराश नाल करदे आ। ते फिलहाल थोनू असी कुछ एक 2-3 मैसेजेस होर दे दी। एक तां नवां किचन किचन किचन रेडी कराओ, घर वाली नूं खुश करना ना, किचन रेनोवेट करा दो थोड़ा जिहा, देखियो असी खुशी मिलदी। सो थोनू असी नंबर दिंदे हुंदे ऑलवेज किचन रेडी कराउणा, तां मिस्टर जसपाल राय बाई जी, जसपाल जी नूं फोन कर लो, नवीं किचन तैयार कराओ, वैनिटीज नवी है, काउंटर टॉप नवे, किचन ओदे नाल नाल टीवी दे आले दुआले कोई एंटरटेनमेंट यूनिट रेडी करवाने ने। नंबर तुसी लिख लो एक बार फिर 416-859-1920 416-859-1920 जसपाल राय भाजी, न्यू हाइट्स किचन, बहुत ही सोहना काम करते हैं। मैं हमेशा कहना कि जिनी तारीफ करिए ना भाजी की उन्नी ही घट है। तो गिल फार्म डिक्सी ते किंग दे कोर्नर ते गिल फार्म है। सब्जी दी पनीरी चाहिदी आ, हर एक सब्जी दी पनीरी गिल फार्म तो थानू मिल रही है, राम तोरी, कद्दू, बैंगन, लौकी, भिंडी, होर कुछ रहता नहीं गया, ते होर बड़ी पनीरी है, सिर्फ $2.49 तो पनीरी थानू मिल रही है। इत्थे फ्रैश देसी अंडे, फ्रैश शहद फार्म दा सोयल मनूअर, ऑरगैनिक कॉम्पोस्ट, फ्रैश मिल कीता चक्की दा आटा, डिक्सी किंग 1408

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलने लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: जी तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम, तो अज ही सानू कॉल करो 647-504-15।

क्या बात है, वीकेंड आ रहा, मौसम बहुत प्यारा खूबसूरत गर्मा गर्म है, धुप निकली है पूरी, सो एंजॉय करो इस खूबसूरत प्यारे जी वेदर नू, ते थोड़ी जी वेदर दी होर भी इंजॉयमेंट नू वधाउणी है यार, कठे गीत संगीत सुनिए, गल्लां बातां करिए, रौनक मेला फुल बटा फुल, 9 बजे तक असीं तुहाडे नाल, 9 बजे तक भंगड़े भी पहिणगे, गिद्दे भी पहिणगे, गावांगे खूब, ते खाओ पियो ऐश करो मित्रो, दिल पर किसदा दिखायो ना, ते दारू पी के गड्डी चलायो ना।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है यार, अमेजिंग। सो प्रोग्राम है पंजाबी रा ते स्टूडियो का नंबर है 905-673-3337 905-673-3337 ते गलबात थोड़ी साड़ी हो रही है ते जरूर एनी टाइम कोई भी गीत संगीत सुनना दस दिया करो। इंस्टाग्राम से बड़े थोड़े मैसेज आते रहते हैं, थैंक यू। कोई भी नंबर चाहिए किसी भी बिजनेस परसन किसी भी साडे स्पॉन्सर दे इंस्टाग्राम पेज है साडा पंजाबी लहरा PUNJABILEHRAN इंस्टाग्राम से मैसेज कर दो ते थोड़े लिए कोई भी नंबर चाहिए हाजिर ने। मनजीत साढ़े नाल ने अपलायंस जंक्शन तो मनजीत वेलकम।
1: थैंक यू सो मच नवी, प्रोग्राम सुन रहे सारे श्रोतियों नू मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। इस वीक दी स्पेशल डील्स ने, सब तो पहले जिन्हें भी क्लाइंट इस टाइम अपना किचन रेनोवेट कर रहे हैं, बिल्ट इन अपलायंसेस दा पूरे दा पूरा कॉम्बो सैट है जिदे विच 36 इंच दा आइस एंड वाटर डिस्पेंसर वाला काउंटर डेप्थ बिल्ट इन फ्रिज, 36 इंच दा बिल्ट इन कुकटॉप, 30 इंच दा बिल्ट इन वाल ओवन ते माइक्रोवेव कॉम्बीनेशन विद बिल्ट इन स्टेनलेस स्टील दी डिशवाशर, $13,000 दी वैल्यू दा पूरे दा पूरा बिल्ट इन अपलायंसेस दा बंडल है जिहड़ा कि सिर्फ $6,999 च इस वीक तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं। जिन्हें भी इन्वेस्टर इस टाइम प्रोग्राम सुन रहे ने, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे पांच अपलायंसेस दा कॉम्बो है जिदे विच 36 इंच दा फुल साइज फ्रिज, ग्लास टॉप वाला इलेक्ट्रिक स्टोव, टॉल टब दी डिशवाशर विद वॉशर ते ड्रायर, $5,500 दी वैल्यू दे पांच अपलायंसेस दा कॉम्बो है जिहड़ा कि सिर्फ $3,199 च इस वीक तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं। ते लास्ट दे विच नवी सॉकर वर्ल्ड कप आ रहा, सो सैमसंग दा एक नवा टीवी आया मिनी एलईडी करके जिदे च सॉकर मोड है, उदे विच प्रॉपर सॉकर दे रिलेटेड उन्होंने कंटेंट जिहड़ा पाया जिदे विच तुहानू ग्राउंड दा कलर वगैरह पूरा लगेगा। 65 इंच दा टीवी है जिहड़ा कि $1,300 दी प्राइस तो एक्सक्लूसिव घटा के $899 च सॉकर मोड वाला मिनी एलईडी सैमसंग दा नवा टीवी है 65 इंच दा तुसी लगा सकदे आ। दो लोकेशनां तो असीं सर्व करदे आ, ब्रैम्पटन वेस्ट मिसिसागा स्टील्स ते ब्रैम्पटन ईस्ट एयरपोर्ट रोड एंड क्लार्क। नंबर टू कॉल इज
0: 905-450-0054-905-450-0054 ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਵੀ ਯਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਟ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 60 million ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ, 60 million ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ 60 million ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਸਡੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਸਰਾਸ਼ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
0: ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਾਸ਼, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ?
2: ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਇਸਮੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ अभी के टाइम पे, आज के टाइम पे जो 2 महीने रह गए और 2 बैच रह गए हैं इस एकेडमिक ईयर को, तो उसमें रिक्वायरमेंट लाइक आपकी होनी चाहिए कि आपके पास स्टेटस पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन का होना चाहिए, एंड आपकी इनकम जितनी कम है, ज्यादा नहीं कम है, उतना आपको ज्यादा बेनिफिट है। स्किल हासिल करें, 30 to 100,000 की फंडिंग अपने गवर्नमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट से हासिल करें, सोखे जे कोर्सेज ने जी, एंड आज के टाइम पे जो हाफ अमाउंट आपको आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, दैट इज नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स, और सारा अमाउंट को कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं जी। इसमें कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं होती है इसमें, तो देयर इज नो कोलेट्रल, नो सिक्योरिटी, कोई कैच नहीं है जी इसके अंदर।
0: ठीक है, क्या बात है। नहीं रीसा सराश, नाल दी नाल तुसी ये दसो, जे फैमिली है कोई ते सारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मीट कर दी है, ता उन्हां दी किन्नी क ग्रांट बन जांदी है?
2: डिपेंड करता है आपके फैमिली साइज पे, अगर आपके नंबर ऑफ किड ज्यादा है एंड अगर आपकी इनकम कम है, 2024 का नोटिस ऑफ असेसमेंट अभी देखा जा रहा है, तो आपको ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप कहेंगे आपकी इनकम 25,000 है, वाइफ की 30,000 है एंड आपके 3 kids है, तो आपके अप टू 100,000 की फंडिंग बनती है, जिसमें से हाफ पैसा $50,000 इज नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स, और कहीं भी आप सारे अमाउंट को कैसे भी खर्च कर सकते हैं। और जो लोन भी होता है ना, वो आपने अगर एक साल का कोर्स है तो 1.5 साल बाद लौटाना स्टार्ट करना है। शुरू में ब्याज दर है 0% 1 से 1.5 साल, उसके बाद ब्याज दर है 2.5% पूरे साल का। हमें कॉल्स आते हैं, अभी कॉल आए जैसे हस्बैंड वाइफ है, ओल्ड है, सीनियर सिटीजन है, तो उन्होंने बोला कि हमारी कितनी फंडिंग बनेगी। हमने उन्हें बोला भी आपको नेट ग्रांट आ रही है $14,000, क्योंकि बच्चे नहीं उनके, राइट, 1% पड़ेगा दो में से, फैमिली ऑफ टू में से। तो उन्होंने बोला अच्छा इसमें से कॉलेज की फीस जाएगी। मैंने कहा नहीं, कॉलेज की फीस माइनस करके बताया मैंने आपको $11,000। तो मतलब लोग अभी समझते हैं कुछ कैच होगा, देयर इज नो कैच इन इट। हाँ, मैंने एक बात जरूर बोली उनको, अगर आप 1 अगस्त के बाद आएंगे फैमिली ऑफ टू में, आपको जो आज 14,000 की नॉन रिफंडेबल ग्रांट जो आपको कॉलेज की फीस माइनस करके आपके खाते में आ रही है, साथ में 17,000 का 0% पे लोन आ रहा है, 1 अगस्त के बाद सारा ही लोन आएगा, ग्रांट वर्ड यूज ही नहीं होगा उनके केस में। तो अभी फायदा है, अभी एनरोल करें, फंडिंग हासिल करें, सोखेचे कोर्सेज करें, नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक।
0: नंबर है सरांश दा, तुसी हुणे लिख लो 4372643175 4372643175. सरांश, कोर्सेज केड़े केड़े ने ते डॉक्यूमेंट केड़े लगदे आ?
2: हाँ जी, कोर्सेज ज्यादातर क्लाइंट्स चूज ही करते हैं, लाइक फुली ऑनलाइन कोर्सेज। अब आप हमारे क्लाइंट ज्यादातर हैं 40-50 साल के, तो हम उनको उन कोर्सेज में नहीं डालते जहां वो बैग पैक लेके लंच बॉक्स लेके कॉलेज जाएं। कोविड के बाद से फुली ऑनलाइन कोर्सेज मिनिस्ट्री ने अलाउ कर रखे हैं। फुली ऑनलाइन कोर्सेज है मैनेजमेंट के, अकाउंटिंग सीखें आप, 3 घंटे आपने देने मंडे टू फ्राइडे। कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो सेल्फ स्टडी मॉडल पे हैं, उसमें आपका एफर्ट कम लगता है, बहुत इजी है वो। साथ में अगर आपको HVAC जैसे स्पेसिफिक कोर्सेज करने हैं, प्लम्बिंग वाले, अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट, PSW, वो भी है, सारे कोर्सेज गवर्नमेंट फंडेड है। आपकी जेब से पैकेट पैसे नहीं जा रहे, उल्टा आपकी जेब में लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में पैसे डायरेक्ट डालती है, मेरे में नहीं, आपके अकाउंट में। 30 से लेके 100,000 की फंडिंग, जिसका हाफ पैसा क्या है, नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स।
0: नंबर सरांश दा 4372643175 4372643175 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਸਰਾਸ਼ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਲਦੀ।
2: ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਰਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੱਚੋ ਕੇ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੋਈ ਇਸਮੇ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ। ਉਲਟਾ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਕਮ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਤੇ ਹੈ ਇਸਮੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੈਚ ਇਨ ਇਟ। और लाइक इसमें आपका सर्विस कैनेडा नाम का डिपार्टमेंट है, वो डील करता है, CRA से लोग डरते हैं तो वो डील नहीं करता है इसको। और गवर्नमेंट आपके अकाउंट में फंडिंग 30 से 90 डेज में डालती है, ये नहीं कि आपने आज एनरोल करा कल डाल दी, नो। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को जाते हैं, 30 से 90 डेज में वो असेस करते हैं, आपको एस्टिमेट तो वो भी दे देंगे, फिर फंडिंग रिलीज होती है। तो ये नहीं कि पहले सीबा लोन की तरह नहीं, आज पैसे दी कल मांग लिए, ना। पहले असेसमेंट गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, हमारी फीस काम होने के बाद $199 से $499 है, कोई परसेंटेज कोई कमीशन नहीं है। जैसे गवर्नमेंट इतनी चीजों में, फॉरन एड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर उधर लगा देती है, वैसे गवर्नमेंट एजुकेशन इन्वेस्ट करती है, कोई कैच नहीं है जी। कॉल करें 4374371 4374371 हुणे कॉल करो 4372643175 4372643175। साडा प्रॉपर ऑफिस हैगा जी 1,000 square feet का, 200 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे। हम टिम हॉर्टन पे नहीं मिलते क्लाइंटों से, हम 7 years से बिजनेस में, हजारों क्लाइंट को ऑलरेडी हेल्प कर चुके हैं। 200 एक्सपर्ट बुलेवर्ड, आप कल हमारा पंजाबी लहरा का लाइव भी है, आप इनवाइटेड है।
0: वेरी गुड, क्या बात है। सो जरूर सरांश का नंबर नोट कर लो 4372643175। सरांश बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू,
0: थैंक यू जी। 2586 हेलो,
3: ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
0: ਵਧੀਆ ਵੀਰ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
3: ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਗਾਣਾ ਹੀ ਲਾ ਦੋ ਯਾਰ।
0: ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਏ?
3: ਮਨਕੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਪੱਟ ਤਾਂ ਸ਼ਕੀਨ ਮੁੰਡਾ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ, ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕੀਨੀ ਲਾ ਕੇ।
0: ਪੱਟ ਤਾਂ, ਅੱਛਾ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂ। ਪੱਟ ਤਾਂ
3: ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸੇ ਘੁਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਪੱਟ ਤਾਂ ਸ਼ਕੀਨ ਮੁੰਡਾ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ।
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ।

0: बुनियादियाँ, ताज़ा तरीन जानकारियाँ या लबरेज, महकमे सौगात मंदा, साझा विरसा,
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM पे, सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक, बिजनेस डे पर जाते पसार ले, संपर्क करो
0: साझा विरसा दे टीनो 647-8352-94 6478355294।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित, एक वधेंदी आरजू, दूजा साहेब आवे चित दे महावाका अनुसार। सारे ही नगर निवासियां नूं बेनती कीती जांदी है, भाई अमृत वेला हो गया, 4 बज गए, उठो, इशनान पानी करो, गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 90545-12600.
1: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
2: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
5: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
6: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं।
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
8: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: 81 ਪੰਜਾਬ ਟੋਰਬਰਮ ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 1 905-799-8877 ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ ਡੋਟ ਸੀ ਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ
1: मैं नवा घर लिया तेन पता है प्रॉपर्टी इतनी महंगी है नाले मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है एक बाई मैं बेसमेंट भी बनाई है ब्रम्पटन वाले घर दी नाले मैं सोचदा वॉशर एंड ड्रायर भी चेंज कर ही दईए हुन समझ नहीं आ रहा अप्लायंसेस कित्थों लईए
2: हो जी एदे च समझण वाली केड़ी गल है सारे कमां लई इक्को जगह चलो मिसेस अगा स्टील ते अप्लायंस जंक्शन ते इन्हां दे प्राइस अते सर्विस नूं कोई बीट नहीं कर सकदा तुसी 6 मंथ तक दी पेमेंट भी बनवा सकदे हो सारे ब्रांड्स दे ऑथराइज्ड डीलर्स भी ने मिसेस अगा स्टील ते अप्लायंस जंक्शन कॉल 905-450-0054 905-450-0054

0: राइट।
1: हाँ जी, नया वाला स्टार्ट हो रहा है।
0: ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि फंडिंग कितनी बनती है अगर एक परिवार में जो 2 से लेके 5 तक की फैमिली हो तो कितना उनका बनेगा?
1: हाँ जी, अगर फैमिली ऑफ टू है, हस्बैंड वाइफ है, जैसे सीनियर सिटीजन हमारे पास आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30% क्लाइंट हमारे सीनियर सिटीजन है, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ पढ़ते हैं, तो उनको अप टू 45,000 डॉलर की फंडिंग बन जाती है। 45,000 डॉलर। अब इसमें से हम जब उनको फोन जब फोन आता है, बोलते हैं जी आपकी नेट ग्रांट बनती है 14,000 डॉलर नेट ग्रांट। अच्छा, वो कहते हैं अच्छा इसमें से फीस जाएगी अभी कॉलेज की। मैंने कहा नहीं,
0: अच्छा,
1: नेट ग्रांट मतलब हमारा है इतना पैसा घर लेके जा रहे हैं, ग्रांट का फीस काट दी मैंने ग्रांट में से पहले।
0: ठीक है।
1: 25,000 की ग्रांट बनती है, 11,000 फीस चली गई, 14,000 आप घर लेके चले गए नेट ग्रांट का, साथ में 17,000 का लोन, 32,000 अपने खाते में दिख गया फैमिली ऑफ टू में। सिमिलर वे में फैमिली ऑफ फाइव में अप टू 100,000 डॉलर मिलता है, जिसका 50,000 डॉलर 100,000 डॉलर मिलता है, जिसका 50,000 डॉलर क्या है नॉन रिफंडेबल ग्रांट पोर्शन, रेस्ट 50,000 क्या है ऑप्शनल लोन एट 0%। वो लोन बिना क्रेडिट चेक के, बिना सिक्योरिटी के, बिना कोलेटरल के, आपने 1 साल तो 0% यूज करा और 1.5 साल बाद रिटर्न करना स्टार्ट करना होता है, और जब 10 साल में रिटर्न करते हैं उस टाइम में ब्याज दर क्या होता है 2.5% पूरे साल का, मतलब ग्रांट भी आ गई। ऑप्शनल लोन लेना है ना लीजिए, आपकी इच्छा है, वो तो ऑफिस आते हैं तो सब लोग लेते ही हैं लोन, बिल्कुल मिस नहीं करता। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 1 अगस्त के बाद 2 बैच रहेंगे जून और जुलाई में, तभी हम इतना जोर लगा रहे हैं, 1 अगस्त के बाद अगर यही फैमिली ऑफ टू है तो उनको अप टू 45,000 का जो आज 25,000 ग्रांट आ रही है उसमें से 45,000 में से 25,000 ग्रांट है, वो पूरा 45,000 ही लोन में आएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज कर रही है, एजुकेशन में कट्स कर रही है गवर्नमेंट ग्रांट्स में, और जो फैमिली ऑफ फाइव को अप टू 100,000 की फंडिंग आ रही है वो आएगी सिर्फ अप टू 100,000 डॉलर लोन, फुली लोन 1 अगस्त के बाद अगर आप एनरोल करते हैं। इसलिए आज एनरोल करें, आज 50% पोर्शन आपकी फंडिंग का क्या है नॉन रिफंडेबल ग्रांट।
0: बिल्कुल। अच्छा सराश, इतनी अवेयरनेस की जरूरत पड़ रही है ना, उसका रीजन क्या है वैसे कि लोगों को पता नहीं है?
1: हाँ जी,
0: क्या
1: दो
0: है?
1: रीजन है इसके। अब तो पता है, चलो हमने 1 साल पहले शुरू करा था इनवर्सिटी के साथ, तब तो बड़ा बड़ा यूनिक था, तो लोगों ने 1-2 महीने बाद भरोसा करना स्टार्ट करा। शुरू में बड़ा हमें वो क्लाउड ब्रेक करने में टाइम लगा, हमें 1-2 महीने। आज
0: हाँ,
1: से पूरा एक से डेढ़
0: ये भी हो जाता है कि ऐसे पता नहीं है भी सही के नहीं, है ना, थोड़ा ये भी हो
1: हाँ,
0: जाता
1: ऐसा
0: है, इसलिए
1: होता है।
0: थोड़ा टाइम लगा होगा जी।
1: हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि एक तो हमारी फीस बड़ी कम है जी, 199 से 499 डॉलर। हमारे पास क्लाइंट आते हैं कहते हैं हमने 2500 दिया, 3500 दिया, एडवांस दिया, हम लेते हैं 199 से 499 डॉलर फ्लैट फीस, परसेंटेज नहीं कह रहा आपको, 199 से 499 डॉलर लेते हैं काम होने के बाद लेते हैं। और आपकी ईमानदारी चेक होती है, आप देते हैं नहीं देते, आपकी ईमानदारी चेक होती है। लोग शुरू में 2500-300 ले लेते हैं और बोलते हैं पता नहीं कौन सी फंडिंग दिला रहे हैं, उधर उधर महंगी महंगी करके अब आगे बताते हैं क्लाइंट, तो जब हम सुनते हैं हमें वो रेडियो पर तो लाइट आके रेडियो में जाते हैं। इसमें एक तो ये रीजन है, हम इसकी अवेयरनेस करनी पड़ती है, हम छोटे अमाउंट पे काम करते हैं, छोटे मार्जिन पे, लेकिन हमारा वॉल्यूम चाहिए होता है इसलिए। नंबर 2, 2 महीने रह गए हैं आज के टाइम पे, अगर हमारे पास 100 क्लाइंट आ रहे हैं तो 80 डिटेल में जाते हैं जो ऑफिस आते हैं फोन पे। ये 2 महीने के बाद जब गवर्नमेंट सिर्फ ग्रांट को हटा देगी और सिर्फ लोन रह जाएगा, उस टाइम पे हमें पता है हमें भी हीट आएगी। जो आज 100 बंदे तब आएंगे तो 50 रिटेन होंगे, आज 100 में से 80 रिटेन हो रहे हैं। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, आप गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स करें, फुली ऑनलाइन सोखे जो कोर्सेज करें, नो एज लिमिट, 40-50 आपकी सेल है, नो एज लिमिट। सेल्फ एम्प्लॉयड है, ट्रक ड्राइवर, ऊबर ड्राइवर, सिंगल मदर है, अच्छा बेनिफिट है आपको, 2-3 घंटे आपने देने, 2-3 घंटे आसान जो कोर्सेज ने दी, एग्जाम्स नहीं है, असाइनमेंट्स हैं, और आप फैमिली ऑफ 4 है तो अप टू 80,000 डॉलर, फैमिली ऑफ 2 है तो अप टू 45,000 डॉलर की फंडिंग अपने अकाउंट में डायरेक्ट हासिल करें। नोटिस ऑफ अरेस्टमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स लग देने जी दे, एंड डॉक्यूमेंट आपके पास गवर्नमेंट पहले से ही है तो इसमें कुछ हेरा फेरी है ही नहीं, और ना हमारी कोई परसेंटेज ना कोई कमीशन है, एंड टू एंड ऑल वाइट।
0: बिल्कुल जी, ते तुसी जरूर पहला कॉल करो, जाओ इन्हां दे ऑफिस दे विच, क्योंकि जदों तुसी बैठ के गलबात करोगे तां तुहानूं सारा कुछ क्लीयर हो जाएगा, है ना। जिहड़े जिहड़े कोई डाउट लगदे आ उन्हां नूं क्लीयर करो, फिर अपना तुसी अगे अगला कदम जिहड़ा उह वधा सकदे हो। सर नंबर तुसी नोट करो सरांश नूं कॉल करन दे लई, 437-264-3175 ते तुसी कॉन्टैक्ट करना है, 437-264-3175 ते तुसी सरांश नागपाल दे नाल गलबात करो, ते वधिया जानकारी लैके फिर तुसी अपना एडमिशन लो, ते नाले जो ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है उहदा फायदा चुको। ते होर कुछ ऐड करना है सरांश?
1: नंबर देना चाहूंगा दो बार और।

यार कैसे लफ्ज़ आ यार, मैं तो हैरान हूँ। सुपने विच तेरी सूरत वेखी हो गया दिल दीवाना है। लिखण वाले बंदे कैसे कमाल दीआं चीज़ां लिख गए यार। बस इहो जिहे गीत तुसीं जिन्नी वारी मर्जी सुणो तुहानूं ऑलवेज नवें लगदे आ। तुहाडी फिर हुण कह देवां ना गवां, फिर कई बंदे गुस्सा ही ना कर लैण। इहो जिहे गीत तां बस इदां लगदे जिवें तुहाडी थोड़ी देर बाद करना, हाले 2 मिंट हैगे अपने कोल।

0: ਸਮਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 6474481000 6474481000। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: Last night, you went out drinking and you did the right thing. You left the car at home. Thank you. But even though you slept, do you think you're okay to drive? If you drank a lot the night before, you could still be intoxicated. Only time, not a cold shower, a hot coffee, or a big meal can lower your blood alcohol concentration. Plan ahead for your night out and the next morning. You'll be helping to keep our roads safe. A message from SmartServe Ontario and Arrive Alive, Drive Sober.
5: 32, 55, 80 मिलेंगे। हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
6: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 9054502828 905-450-2828।
7: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 bedroom 2.5 वाशरूम हन। हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है। $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 feet दा पैड भी बनया है। 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट कर दी है। 12x30 feet दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है। पिछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा। बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222।
8: Airport Nissan Brampton 905-791-4900.
1: This is AM 530.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Hooper Airport and Derry, the intersection Hooper. To see cheap flight tickets, Nepal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sono chahide ne. Jan to see visa services Nepal de vecho, puri family vacation Hooper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Hooper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 0905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection open.
5: Nobel Fresh Foods share with Iko Dora Bagia. Top quality te low low price with Nobel Fresh Food. Fair number lagia. Ata, da, chawal, ale sabzi te dud kyo. Sab milega Nobel Fresh Foods. 2945 Sandalwood Parkway East, Dusri Location 20 Gillingham Drive in Brampton. Phone 289-801-0566. Nobel Fresh Foods.
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
6: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
8: विमला विलेज ला विलेज पढ़ दी पीओ च जंट पढ़ दा। विमला विलेज ला विलेज, विमला विलेज ला विलेज पढ़ दी। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: से अपना पेश किया जा रहा है। बहुत सस्ती जी है जी ग्रोसरी, तुम नोबल फ्रैश फूड तो लै सकते हैं। दो लोकेशन तो तुम जो जी इस टाइम यह सर्व कर रहे हैं, 20 गिलगम ड्राइव 2945 सैंडलवुड पार्कवे। होलसेल इनक्वायरी करनी हैगी 6474465050 हो सकती हैगी। और एक बार फिर जी चलते हैं थिया के मेले के वल। नासर जी, जिदा कि सब नू पता है कि इस साल का जो अपना 24वें साल का थिया का मेला है, 23 साल जो जी पिछले साल थिया के मेले पूरे हो गए थे। ऑलवेज असी मदरस डे जो जी करते होंगे कुछ जी प्रॉब्लम आने करके, कुछ जी फैमिली सिचुएशन करके, बट हूँ एवरीथिंग इज फाइन एंड नाउ वी आर बैक। तो हूँ आप जो जी तिया का मेला इस टाइम कर रहे हैं 21 जून
1: जी। बिल्कुल जी, इस तरह 21 जून तो अपने कैलेंडर से नोट कर लो, 21 जून बहुत वधिया तुहाडे वास्ते असी शो लैके आ रहे हैं। तियां दा मेला तुहानू यह पता होना चाहिए है, जिंदे वास्ते तुसी पूरा साल वेट करते हो भी ये कदों आएगा। बहुत सारिया कॉल्स आंदियां ने साडे ऑफिस जो तुसी पुछदे हो भी तियां दा मेला कदों आ रहा, कौन कौन आ रहा है और कौन कौन आ रहा है। देखो दसदे बड़ी खुशी हुंदी पई है, मास्टर सलीम बड़े सालों तो बाद तुहाडे रूबरू होएगा, मन्नत नूर मेरा ख्याल है पहली दफा इत्थे आ रही है इस कंट्री तुहाडे रूबरू होण, क्योंकि उनका बिलियंस जरा लॉन लाची वाला गाना किरण जी क्रॉस कर चुके हैं और इन्ना वधिया गाना और लोग बेचैन सन उन्होंने मिलने वास्ते। तो फाइनली सुखिंदर जी ने कहा भी हूँ असं उन्होंने लैके आना ही पैना है क्योंकि लोग उन्होंने सुनना चाहते हैं। तो कोई भी तुसी जानकारी लेनी चाहते हो तुसी कॉल करो 9057990999 पर कॉल कर सकते हो। और टिकट्स असी ओपन करती हैं अज तो पहला दिन ने, टिकट्स साढ़िया सुबह दिया कॉलों बजदिया पई हैं, टिकट्स अज ही असी ओपन किए हैं सिर्फ $30 च। तियां दा मेला $30 च नॉन स्टॉप इंटरटेनमेंट 12 तो लैके शाम 8 बजे तक, और इन्ने वड्डे वड्डे सिंगर तुहाडे कोल सुनन नूं मिलेंगे। तुसीं टिकट लै सकदे हो मैगा स्टार इवेंट्स ते जाके .com megastarevents.com ते जाके टिकट लै सकदे हो। और कोई तुसीं लिंक चाहुंदे हो असीं तुहानूं लिंक भी भेज देवांगे, तुसीं आसानी नाल लभ सकदे हो। उत्थे फ्लोर प्लान हर चीज़ पई है। और स्पोंसर तुसीं करना चाहुंदे हो इस शो नूं, तुसीं लाजमी करो, इस मौके तो जरूर फायदा चुको। और सब तो वधिया जरा प्लस पॉइंट है, तुसीं जदों स्पोंसर करोगे ते उन्दे टिकट ते तुहाडा नाम प्रिंट हो सकदा है, तुहाडा लोगो प्रिंट हो सकदा है। वो एक प्लस पॉइंट असीं ऐड करता है, सॉरी पहली दफा काम असी करन जा रहे हैं। लोगो तुहाडा टिकट ते प्रिंट हो सकदा है, वो तुसी वो वेख के और पब्लिसिटी होंदे ना तुहाडी वधेगी, तुहाडे बिजनेस ग्रो करेगा। और कोई भी तुसी स्टॉल लाना चाहते हो उन्दे वास्ते कॉल करो 9057990999 ते कॉल करो, और स्टॉल भी तुसी अपनी मर्जी का बुक करा सकते हो। किसी तरह का कपड़े ज्वेलरी और कोई खान पीन का किसी तरह स्टॉल लगाना है, कॉल करो 9057990999 जी करण जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, सारे लिसनर सारिया जिन्हें भी भैन सुन रही है, संडे नू जड़े जी मोस्टली सारे नू ही छुट्टी होंगी है। 21 जून संडे का जरा जी यह दिन पै रहा, बार बार केस करके दस रही क्योंकि सू बहुत सारिया पहला भी कॉल आ रही थी कि तुम मदरस डे से जरा जी जरा असं 9 या 10 मई नू कराने तुम क्यों नहीं करा रहे हैं। सो हूँ असं सारे की स्पैशल रिक्वेस्ट जरा जी जून के तिया रखिया है। सो हूँ तुम सारे ने जरा जी हम हम आके पहुंचना हैगा है जी 21 जून नू पीयरसन कन्वेंशन सेंटर दे विच। $30 दी जिहड़ी है जी इहदी सिर्फ और सिर्फ टिकट हैगी आ, टिकट ते कोई भी सीट नंबर नहीं हैगा जी जनरल एडमिशन दे विच। ते तुसी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तुसी पहला आओ जिथे मर्जी तुसी जिहड़ी जी अपनी सीट लैके बह सकदे हैगे आ। टिकट जिहड़ी जी megastarevents.com megastarevents.com तो जिहड़ी जी तुसी लै सकदे आ। लिंक चाहिए लिंक असीं भी तुहानूं जिहड़ा जी प्रोवाइड कर सकदे आ। सो मनप्रीत जी दे नाल एक वारी लाइन दुबारा कनेक्ट हुई, मैं ट्राई कर दी जी मनप्रीत जी दे नाल गलबात हो सके। मनप्रीत जी
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया किरण।
0: बिल्कुल जी बहुत बहुत शुक्रिया मनप्रीत जी तुहाडा भी। ते तुसी दस्या कि हुणी तुसी जिहड़ा जी हवेली दे विच थोड़े जिहे सैर करन पहुंचे होए सी। मनप्रीत जी पहला तो दसो कि गर्मी दा की हाल चाल है।
2: मैं किरण उही दस रही हां कि बहुत ज्यादा गर्मी पिछले कई दिनां तो पै रही, इवन अज सवेर टाइम थोड़ा जिहा विच विच मौसम इंज लग रहा सी कि पंजाब दे किसे किसे जिले दे किसे किसे हिस्से च किनमिन हुई आ, ते थोड़ा जिहा झड वाला माहौल जिहनूं बदल वाली कह दिंदे बणिया सी, पर उस तों बाद सारा दिन बहुत कड़ाके दी धुप लगी ते इवनिंग टाइम थोड़ा जिहा माहौल जिहड़ा ओह ठीक होया। दरअसल असीं क्यों हवेली गए सी मैं भी दसदा, जिवें तैयारियां उधर चल रहीयां ने जी तियां दे मेले दियां, साडे बहुत सारे कलाकार जिहड़े इंडिया तों जाणे ने ते साडियां इधर उहनां नाल मीटिंग्स चल रहीयां ने, बहुत एक्साइटमेंट आ सारिआं दे विच, सारे अपनिआं रिहर्सल्स ते लगे होए ने, सारे अपनिआं तैयारियां दे विच लगे होए ने। ते सानूं भी सुखी जी दे वल्लों ड्यूटी लगी आ बई जाके थोड़ा थोड़ा देखणा वी आ वी किवें दा कम्म चल रिहा, कुछ नवें गाणिआं दे नाल तुहाडे सामणे ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ।

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर लै गया आटा दाल चावल दाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सेंटर वुड पार्कवे ईस्ट दूसरी लोकेशन 20 किलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन फोन 2898010566 नोबेल फ्रेश फूड
3: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
4: Selected frame, regular single vision lenses for just $129. 35 Resolution Drive, Brampton in Walmart Plaza. Call 905-460-8888. That's 905-460-8888.
3: Serving from two locations. Best service, best price, Specs Express ke saath.
5: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda Ji 647-822-9607
6: यारों के साथ जश्न या फैमिली के साथ करना हो जश्न ढाबा ऑन द फॉल्स आए टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा
7: दिल्ली वाला बटर चिकन रोगन जोश सोया चाप बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स द बेस्ट फूड इन नाइग्रा फॉल्स LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स फ्री पार्किंग विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नाइग्रा फॉल्स कॉल 9053580864
6: 9053580864 ढाबा ऑन द फॉल्स
8: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है
9: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500 416-817-6500

0: एडमिशन नहीं है 100 KG कोर्सेज में, एंड देन आप फंडिंग हासिल करते हैं गवर्नमेंट से लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए. गवर्नमेंट फीस भी वे कर रही है कॉलेज को डायरेक्ट, एंड आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए 30 से लेके 100,000 की फंडिंग आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती, मेरे अकाउंट में नहीं आती. और इसमें से अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में हाफ पोर्शन क्या है, नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स.
1: जी,
0: तो लाइक अभी आप इट्स लाइक वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. ऑलरेडी बहुत लोग एनरोल कर चुके हैं, 7 ईयर्स से बिजनेस में है, बहुत सारे लोगों को हम ऑलरेडी हेल्प कर चुके हैं. कोई कैंप नहीं है जी इसके अंदर. एंड 1 अगस्त के बाद से जो है, 1 अगस्त के बाद से नया जो अकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है
1: जी.
0: उसमें ग्रांट्स गवर्नमेंट कट्स कर रही है ग्रांट्स में, तो आपको इतना फायदा नहीं है. अगर आज फैमिली ऑफ 4 है तो उनके अप टू 80,000 की फंडिंग बनती है, जिसमें से $40,000 इज नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स पोर्शन. अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं फुली ऑनलाइन कोर्सेज, 100 KG कोर्सेज कर देने घर के कम्फर्ट से, लेकिन 1 अगस्त के बाद 80,000 ही लोन है. और आज की रेट में 80,000 डॉलर जिनको फंडिंग आ रही है, उसमें से 40,000 तो नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स पोर्शन है, रेस्ट $40,000 है वो भी 0% पे लोन है फॉर 1 ईयर, एंड 1.5 साल के बाद रिटर्न करना स्टार्ट करना है. उस टाइम में बार क्या है, सिर्फ 2.5% पूरे साल का, मतलब नो क्रेडिट चेक, नो एज लिमिट. हमारे कम से कम 30% क्लाइंट्स की एज 70 से भी ऊपर है, सब घर से घर के कंफर्ट से फुल स्किल डेवलप कर रहे हैं, फुली ऑनलाइन स्कोर कर रहे हैं. फिर देखिए गवर्नमेंट जब $965 मिलियन जेंडर इक्वालिटी पे लगा सकती है, वियतनाम में चावल की खेती के लिए 8.2 मिलियन की ग्रांट दे सकती है वियतनाम के जेंडर इक्वालिटी के लिए, मतलब वहां पे फॉरेन एड में यूक्रेन को $30 बिलियन गवर्नमेंट दे सकती है. देयर इज नो कैच इन इट. गवर्नमेंट इसी तरह एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है. आप अभी एनरोल करें, कोई इसमें कैच नहीं है. 7 ईयर्स से बिजनेस में है. लोग आते हैं हमारे ऑफिस, कहते हैं सर पुराने एजेंट ने $3,500 लिया, $2,500 लिया, अति मॉडर्न में मिला था. हमारा प्रॉपर ऑफिस है जी,
1: टूमुलट
0: एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे. आप आज भी आ सकते हैं ऑफिस हमारे, कोई कैच नहीं है. काम होने के बाद जैसे आपने आज ज्वाइन करा, विद इन 30 to 90 days में गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डाल देती है फंडिंग
1: जी.
0: तो उसके बाद आपने अपनी ईमानदारी से हमारी फीस देनी, जो कि सिर्फ $199 से $499 है. कोई कमीशन, कोई परसेंटेज नहीं है इसमें. ईमानदारी आपकी चेक होती है, मेरी नहीं
1: जी.
0: क्योंकि आपने पैसे कब देने हैं, फंडिंग किसके अकाउंट में आ रही है, आपके अकाउंट में. पैसे आपने में बाद में देने हैं. लास्ट वीक 34 बंदों की फंडिंग उनके अकाउंट में गिरी है, 29 के पैसे आ गए हमारे पास, बाकी 3-4 के बीच भाग रहे अभी फोन करके, हमारे पैसे दे दो, हमारे छोटी सी फीस दे दो, है ना. तो इसलिए ईमानदारी आपकी चेक हो रही, मेरी नहीं हो रही. हमने कोई कैश नहीं रखा जी इसके अंदर. कॉल करें 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175. और हमारा ऑफिस है 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे. जितनी आपकी इनकम कम है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, जितना फैमिली साइज ज्यादा है उतनी ज्यादा फंडिंग आती है, उतनी ज्यादा ग्रांट आती है. कॉल करें, ग्रांट स्किल हासिल करें, सोखे जे फुली ऑनलाइन मैनेजमेंट वाले कोर्सेज है, अपने घर के कम्फर्ट से अटेंड करते हैं. नंबर अगेन 437-264-3175 437-264-3175.
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया सराज से. बिल्कुल तुसी यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी तो सराज जी ना गलबात कर लो. इन्हां दा ऑफिस 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड मिसिसागा दे विच है. 437-264-3175 ते तुसी कॉल कर सकदे हो.
2: रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो. अज साडे मेहमान हुंदे ने इंश्योरेंस दे फील्ड विच, बड़ा ही मन्निया नाम है. ओह हैगा जी तुहाडे लई, तुसी जानदे हो, अमरप्रीत कौर चाबला होरां दा. ओह वी अपनी हर अगे जकल बोणगे कि टिप्स देणगे. नागपाल साहब का नंबर एक बार फिर दे दौ, 437-264-3175. मनप्रीत मैं कहाँ जिन्हें लोगों भी भाई जिन्होंने ग्रांट लड़िया हूँ वेला है अवेल आउट कर लो. इनू अगस्त के कला तब्दील हो जाना है, लोन मिलया करूगा.
1: हाँ जी,
2: ग्रांट नहीं मिलनी, पर हूँ तुम ग्रांट मिलनी है, वापस नहीं करनी है ना.
1: बिल्कुल.
2: नंबर एक बार फिर 437-264-3175 नागपाल होर का टेलीफोन नंबर है. जुड़े हुए देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो. लो जी अगला प्यारा जा नगमा ही हो जाए प्राम देश प्रदेश.
3: यूं ही तुम मुझसे

भाई वाह क्या बात है, पी गया मैं, पी गया है गुरदास जी, नहीं रीसा भाई बहरा बहरा ही है। सो प्रोग्राम है पंजाबी रहा, तो स्टूडियो का नंबर है 905-673-3337-905-673-3337 से गलबात थोड़ी साड़ी हो रही है, तो गीत संगीत लगवाओ, जो भी सुनना दसो, तो कर दें।